टैगोर थे 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी में कि मैं शायद तुम्हारे लिए ही जमीन पर आया हूँ, मैं शायद तुम्हारे लिए ही जमीन पर आया हूँ, एक अधूरी ख्वाहिश का मुकम्मल साया लाया हूँ, मैं शायद तुम्हारे लिए जमीन पर आया हूँ, एक अधूरी ख्वाहिश का मुकम्मल साया लाया हूँ, जिंदगी की भीड़ में तुम्हें पहचान लिया मैंने, जिंदगी की भीड़ में तुम्हें पहचान लिया मैंने, सदियों की प्यास का आज मैं समुंदर लाया हूँ।

चलिए, तारों ने तो जान लिया था उनको अच्छी तरह से, पर अगले मोड़ पर जो गीत आ रहा है वो है 1967 की फिल्म अनीता का। अब भाई अनीता का मेरे लाइफ में क्या वजू क्या मीनिंग है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूज़िक, और जी हाँ दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी।

तो अनीता के 1967 के इस गीत के बाद आपको 60 ईयर का विप्लैश देने वाला हूँ, क्योंकि ये गीत, इस गीत की फरमाइश प्रकाश और सुजाता पाई ने की है। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन है। गीत का नाम है मैं परवाना।

तो दोस्तों ये तो थी प्रकाश पाई की फरमाइश. मैं परवाना, अरिजीत सिंह और पूजा तिवारी और निशा शेट्टी और रक्षिता सुरेश का बड़ा ही मज़ेदार गीत. चलिए आपको रोलर कोस्टर पे ले जा रहा हूँ, तो सीधे आधुनिक गीतों से ले चलता हूँ नूर जहाँ की तरह. और अल्फाज सुनिए इस गीत के कि तू है दरिया, तू मौजों की रों में रवा, मैं तो हूँ बूंद, मिट्टी में मिल जाऊंगी. तू है पर्वत, मैं एक बेनवा साया, मैं तेरे संग कैसे चलूं. नूरजहां की आवाज़ में सुनिए, मैं तेरे संग कैसे चलूं. शीला मेहता की फरमाइश, बड़ी ही खूबसूरत फरमाइश.

मलिकाए तरन्नुम के इस खूबसूरत गीत के बाद एक रफ़ी साहब का गीत आपको पेश करता हूँ. दिस सॉन्ग इज कंसिडर्ड मोहम्मद रफ़ीज मोस्ट इमोशनली कॉम्प्लेक्स सोलोज, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन वंस कॉन्शियस एंड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ. इकबाल कुरैशी साहब ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया. 60s में उन्होंने बहुत सारी हिट्स दी थी हमें, पर हम भूल जाते हैं कि दुनिया से क्या शिकवा करूं मैं खुद से खफा हूं. शेर पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, कि दुनिया से क्या शिकवा करूं मैं खुद से खफा हूं, अपनी ही परछाई से आज मैं जुदा हूं. कि दुनिया से क्या शिकवा करूं मैं खुद से खफा हूं, अपनी ही परछाई से आज मैं जुदा हूं. तलाश है उस सुकून की जो अंदर ही कहीं है, तलाश है उस सुकून की जो अंदर ही कहीं है. मैं भटकता हुआ मुसाफिर खुद ही अपनी सजा हूं. इतना खूबसूरत नगमा. फिल्म थी बिंदिया, 1960 में रिलीज हुई थी. और आपको भी कभी कभी तो ये लगता हो गया कि मैं अपने आप से घबरा गया हूँ.

तो दोस्तों, अपने आप से तो आप घबराएं, पर आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा का ये अगला गीत आप सुनिए। अनीता रतूरी की फरमाइश है, क्योंकि द स्वीटनेस ऑफ सिंपल इनोसेंट लव एंड इट्स रिफ्रेशिंग इफेक्ट ऑन लाइफ इज कैप्चर्ड इन दिस सॉन्ग। प्रीतम की कॉम्पोजिशन है कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। शुरू हुई है आज से हमारी एक नई कहानी, जिंदगी की तलखियों में, जिंदगी की तलखियों में तू घुल गया है ऐसे, जिंदगी की तलखियों में तू घुल गया है ऐसे जैसे किसी पुराने किस्से में कोई नई निशानी। लीजिए सुनिए अनीता रतूरी की फरमाइश। फटा पोस्टर निकला हीरो 2013 में रिलीज हुई थी, उसका गीत है।

0: तो एक तरफ तो रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मतलब गट गट गट पी गए, और दूसरी तरफ द टाइमलीनेस ऑफ लॉन्गिंग, वेटिंग अक्रॉस लाइफ टाइम्स फॉर कंप्लीशन. हृदय नाथ मंगेशकर की कॉम्पोजिशन है, गुलजार के लिरिक्स हैं, लेकिन 1991 में रिलीज हुई थी. और द फिल्म इज अ गोस्ट स्टोरी एक्चुअली, एक्सप्लोरिंग री इनकारनेशन एंड अनफिनिश्ड डिजायर. एंड लता मंगेशकर रेंडिशन ऑफ दिस सॉन्ग वन नेशनल अक्लेम फॉर इट्स हॉन्टिंग डेथ. एक शेर पेश कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब इट्स वेरी कनेक्टेड टू द सॉन्ग, कि मैं एक सदी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं एक सदी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अपने ही दिल पर मैं इख्तियार कर रहा हूँ. भाई अपने दिल पर इख्तियार ना हो तो फिर क्या है. मैं एक सदी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अपने ही दिल पर मैं इख्तियार कर रहा हूँ, कि वक्त गुजरा है पर यादें थमी हुई हैं. दोस्तों हम सबका तकाजा यही है जिंदगी में, कि वक्त गुजरता जाता है पर यादें थमी रह जाती हैं, कि वक्त गुजरा है पर यादें थमी हुई हैं. आज भी तुझे मैं इतना ही प्यार कर रहा हूँ. लीजिए सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म लेकिन से. मैं एक सदी
1: शिमारू
0: से
1: के नए वीडियोस के लिए

0: तो दोस्तों, मैं तो तेरे नाल ही रहना, शादी में जरूर आना। राजकुमार राय राव और कृतिका बंधा के साथ आई, बड़ी मजेदार फिल्म थी। और इसका ये गीत मन्नन रावल की फरमाइश है, बहुत ही मजेदार गीत है, आप जरूर गौर से सुनिए।
1: तुमसे आई लव यू एक किस कर सकते हैं?
0: सत्तू थे उसका नाम, सत्तू
2: नहीं, मन मन तो

0: तो दोस्तों ये तो रहा रोटी कपड़ा और मकान का गीत, और रोटी कपड़ा और मकान मिल गए हैं तो निगाहें भी मिलेंगी।
1: शिमारू के नए वीडियोस के
0: सुधीर मटानी की फरमाइश।

तो दोस्तों, ये तो रहा मैं के गानों का कारवां। आज की शाम एक बहुत ही खूबसूरत केएल सहगल के गीत के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि इन गीतों ने हमें सिखाया है कि चाहे हम खुश हों, दुखी हों, दीवाने हों या तन्हा हों, संगीत हमेशा हमारे साथ होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए सिरों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अमिताभ को इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और गाते रहिए।

0: दिस इज भारत एफएम।
1: बचेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: हेलो हेलो हेलो हम सफर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, किमचो वनकम सलाम। मैं हूं आपकी अपनी आरजे डी और आज के इस हम सफर शो के एक ब्रांड न्यू और बहुत ही म्यूजिकल एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के शो में आपके दिल की धड़कनों को मैं बहुत ज्यादा तेज कर दूंगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी उस बोरिंग मीटिंग से निकलिए, अपनी वर्क कम्यूट को स्टार्ट कीजिए और बन जाइए मेरे हमसफर। तो हमसफर्स, इस हफ्ते मुझको आप सबके बहुत ही प्यारे मैसेजेस मिले और उनमें से एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज था श्रीराम का, जिन्होंने आज के शो के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक सजेस्ट किया। श्रीराम लिखते हैं कि हमने दिल की बातें बहुत बार की हैं, मगर दिल की धड़कन को थोड़ा इग्नोर कर दिया है। तो श्रीराम, मैंने इस शो पर शायद दिल की धड़कन को थोड़ा इग्नोर कर दिया हो, मगर आपकी इस सजेशन को मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। आज हम मिलकर दिल की धड़कनों को तराश कर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल स्कल्पचर बनाते हैं। सो प्रेजेंटिंग टू यू एंड फॉर यू, दिल धड़कने दो।

आप सुन रहे हैं भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत, और मैं हूं आपके और अपने दिल की धड़कनों को जगाती हुई आपकी अपनी RJD। अच्छा, हम सफर दिल तो हम सबके पास है और वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में धड़कता भी है, मगर वो स्पेशल धड़कन सिर्फ तब जागती है जब कोई समवन स्पेशल हमारी जिंदगी में एंट्री लेते हैं। उसके बाद तो कहाँ हमारा दिल और कहाँ उसकी धड़कने। वो धड़कने सिर्फ उस स्पेशल इंसान के लिए ही तो धड़कती हैं।

वेलकम बैक। आज की इस म्यूजिकल जर्नी पर हम बातें कर रहे हैं दिल की धड़कनों की और उनकी एकोज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत गानों में। अच्छा हमसफर, जब वो कोई स्पेशल समवन हमारी आंखों के रास्ते से होकर हमारे दिल में उतर जाते हैं तो दिल जैसे हमेशा ही सेटिस्फैक्शन से, एक प्यार भरे सुकून से भरा रहता है। ऐसा लगता है ना कि वो शख्स हमेशा हमारी नज़रों के सामने ही रहें। सुबह उठे तो सबसे पहले हम उनको ही देखें और रात को सोने से पहले भी बस उसी चेहरे का दीदार हो।

नमस्कार सत श्री अकाल वेलकम एंड आदाब यू आर लिसनिंग टू भारत एफएम और वन ऑफ इट्स काइंड मल्टीलिंगुअल एक्लेक्टिक प्रोवाइडर ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज टू इंडियन अमेरिकन्स हेडक्वार्टर्ड इन सिनसिनेटी ओहायो भारत एफएम एयर्स शोज आउट ऑफ सिनसिनेटी शिकागो एंड फीनिक्स We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.

वेलकम बैक। मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आज मेरे हम सफ़र या फिर हम सफ़रर बनकर मेरे और इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। आज के सफ़र पर हम अपने दिलों की धड़कनों को टटोल रहे हैं और उनमें अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, दिल की धड़कनें तो बहुत ओकेजन्स पर बढ़ती हैं, जैसे कि गुस्से में, डर में और एक्साइटमेंट में भी। मगर बस एक मोहब्बत की धड़कन ही तो है जो तेज भी होती है और सुकून भी देती है, बिल्कुल बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, और बेचारे प्रेमियों को काफ़ी कंफ्यूज भी कर देती है। क्या करें, यही तो बस एक ऐसी धड़कन है जो सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है, समझाई नहीं जाती।

वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ, यानी अपनी थोड़ी सी खुश, थोड़ी सी एक्साइटेड, मगर पूरी तरह धड़कती हुई आरजे डी के साथ भारत एफएम पर। भारत एफएम साथ है तो लाइफ में कुछ बात है। हम सफर आज हम बातें कर रहे हैं धड़कनों की, क्योंकि हमारे प्यारे हम सफर श्रीराम ने आज इस टॉपिक की स्पेशल रिक्वेस्ट की है। तो अगर आपके पास भी कोई स्पेशल टॉपिक है जो आप इस प्रोग्राम पर सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं US नंबर 513-488-5070 पर। तो चलिए श्रीराम, आपकी दिल की धड़कनों को भी थोड़ा तेज करते हैं इस अगले गाने से, जो मेरा भी आजकल के गानों में काफी फेवरेट्स में से है।

वेलकम बैक। आज की कम्यूट के इस सफर पर हम म्यूजिकल धड़कनों को अपने दिलों में बसा रहे हैं। अच्छा हम सफर्स, अगर आपने अपने दिल की बात किसी को एक्सप्रेस करनी हो तो आप क्या करते हैं? उनको फूल भेजते हैं, चॉकलेट और गिफ्ट्स देते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं? टेक्स्ट मैसेजेस में तो ज्यादा बातें इमोजीज के थ्रू ही हो जाती हैं, और अगर इमोजीज की बात करें तो मेरा फेवरेट तो रेड हार्ट इमोजी है ही, मगर उससे भी ज्यादा पसंद है वो बीटिंग हार्ट वाला इमोजी और स्टिकर। कितनी आसानी से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन को टेक्नोलॉजी ने कैद करके एक स्टिकर और इमोजी में ढाल दिया है। भाई वाह, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट टेक्नोलॉजी।

वेलकम बैक। आई होप आज के इस धड़कनों को बढ़ाते हुए सफ़र पर आपको भी उतनी ही एक्साइटमेंट हो रही है जितनी कि मुझको। अच्छा, हम सफ़र इस दिल की धड़कनों को तेज़ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी थीम पार्क में रोलर कोस्टर राइड लें तो उससे, या फिर वीडियो गेम्स खेलते हुए किसी क्लोज कॉम्पिटिशन से। कुछ लोग रनिंग और जॉगिंग से धड़कनों को बढ़ाते हैं और कुछ लोग एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स से, जैसे कि बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग। मगर मैं आपको सच बताऊं तो पागल प्रेमियों के लिए ये सब बातें फजूल हैं, क्योंकि उनके दिल की धड़कनों को तेज़ करने के लिए तो बस एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं भारत FM। अगर आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एडवर्टाइज कीजिए भारत FM पर। यू कैन ईमेल अस एट info@bharatfm.com। अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आप भारत FM को अपना पार्टनर जरूर बनाइए।
1: दिस इज भारत FM।
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
0: अच्छा, हम सफर ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि जब हम अपने प्यार के सामने हों, उनसे फेस टू फेस हों, तो हमारी दिल की धड़कनें बस तेज़ ही हो जाएं। कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि तेज़ होने के बदले हमारी धड़कन हमको दगा दे जाए और कुछ देर के लिए बस पूरी तरह थम ही जाए। किसी शायर ने कहा है ना, रुक जाए मेरी धड़कन तो उसे मौत ना समझना, रुक जाए मेरी धड़कन तो उसे मौत ना समझना। कई बार ऐसा हुआ है उन्हें याद करते करते।

वेलकम बैक। आपके कम्यूट के सफर की सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ हूँ मैं आरजे डी, और आप सुन रहे हैं भारत एफएम पर आपका और मेरा फेवरेट शो हम सफर। अच्छा, हम सफर अपने प्यार को पाकर चाहे आपकी दिल की धड़कनें तेज हों या रुक जाएं, इतना तो पक्का है कि उन धड़कनों को बरकरार रखने के लिए आपको अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी बहुत टाइम से मैंने सेल्फ केयर की बातें नहीं की हैं, तो मैं आप सबको आज बोल दूं कि अपने हार्ट का, दिल का हमेशा ख्याल रखिए। रेगुलर चेकअप्स करवाइए, ब्रिस्क वॉक्स और एक्सरसाइज से हार्ट रेट को बढ़ाइए, और ज़्यादा फ्राइड फूड्स वगैरह से दूर ही रहिए। योर हार्ट विल थैंक यू फॉर द केयर।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपकी आरजे डी और आप सुन रहे हैं भारत एफएम। मेरा काम है आपकी स्ट्रेसफुल वर्क कम्यूट को म्यूजिकल बनाना और आपका काम है मेरे हमसफर या हमसफरर बनकर मेरे साथ ड्राइव करना। और हाँ, अपने गानों की फरमाइशें और कम्यूट की कहानियां मुझे ज़रूर भेजते रहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हर एपिसोड में मैं एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर प्ले करती हूँ। तो आज की रिक्वेस्ट हमको भेजी है हमसफर प्रतीक ने, जो आज सुनना चाह रहे हैं एक पूरी जेनरेशन यानी कि 90s की जेनरेशन का एंथम सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं प्रतीक की ये तड़कती भड़कती माधुरी दीक्षित के ठुमकों से भरी हुई रिक्वेस्ट। प्रतीक, आपकी ये फुट टैपिंग रिक्वेस्ट मेरे सर आंखों पर, एंजॉय।
1: आउच!

आज के इस धड़कनों पर थिरकते हुए म्यूजिकल सफर पर मुझे तो बहुत मजा आया, मगर आपका और मेरा आज का साथ बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर खूब सारी गपशप करेंगे। बस आप अपने पसंदीदा गानों की फरमाइशें मुझे भेजते रहिए info@bharatfm.com पर, या फिर मुझे टेक्स्ट कीजिए US नंबर 5134885070 पर। मैं आज का शो एंड कर रही हूँ हमेशा की तरह अपने एक पर्सनल फेवरेट गाने से। तो आज मैं आपको मेमोरी लेन पर बहुत ही दूर 1961 में ले चलती हूँ, जहाँ पर सुरैया हमको अपने धड़कते दिल के राज बयां कर रही हैं। आई सिंसियरली होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग एज मच एज आई डू। मैं हूँ आपकी RJD और आज के लिए गुड बाय। अपने दिल को किसी के लिए तो ज़रूर धड़कने दीजिए, एंड ऑलवेज ड्राइव वेरी केयरफुली।

कैफी आसमी के खूबसूरत बोल, मदन मोहन का म्यूज़िक, रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म थी हकीकत। आदाब मेरे अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी का आईना में, यानी कि प्रोग्राम फरमाइश में। आज हम उन नगमों की दास्तां सुनेंगे जो मैं से शुरू होते हैं। ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशों, हमारे दुख, हमारी जीत, हमारी कहानियाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं संगीतमय सफ़र। रफ़ी साहब से हमने आज की शाम शुरू की और अगले पोड़ पर फिल्म थी बागबां, आदेश श्रीवास्तव का म्यूज़िक, सिंगर्स थे अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक और समीर साहब के बोल। मैं यहाँ तू वहाँ।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

What a haunting, mesmerizing song by Amitabh Bachchan and Alka Yagnik, बागबान से. बागबान अपने ज़माने की अगर हिट फिल्म थी तो 1970 में चेतना ने भी हम लोगों को कुछ ये सिखाया कि थीम जो है बोल्ड होना चाहिए. द फिल्म वॉज वेरी बोल्ड फॉर इट्स टाइम, डीलिंग विद सोशल स्टिग्मास, एंड 1970 में चेतना रिलीज हुई थी. इस अगले गीत की फिलॉसफी बड़ी मज़ेदार है. इसकी फिलॉसफी है रेजिलियंस, स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ एट एवरी टर्निंग पॉइंट इन पॉइंट ऑफ लाइफ. अ वेरी हॉन्टिंग ट्रैक बाय मुकेश, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. कि मैं तो हर मोड़ पर तुझे ही ढूंढता रहा, मैं तो हर मोड़ पर तुझे ही ढूंढता रहा, जिंदगी की धूप में साया ढूंढता रहा. रास्ते बदलते रहे पर मंजिल वही रही, रास्ते बदलते रहे पर मंजिल वही रही, मैं अपनी ही तन्हाई में एक राही ढूंढता रहा. लीजिए सुनिए, मैं तो हर मोड़ पर

तो दोस्तों ये तो रहा 1970 की फिल्म चेतना का एक गीत मुकेश की सुरीली आवाज़ में। एक गलती से मिस्टेक हो गई जो कि मैंने बोल दिया कि ये कॉम्पोजिशन एलपी की थी। जी नहीं दोस्तों, ये इस गीत के बोल लिखे थे नक्श लालपुरी ने और म्यूज़िक डायरेक्टर थे सपन जगमोहन। चलिए वापस मदन मोहन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 1962 में फिल्म मनमौजी ने मदन मोहन यूज्ड द वर्ड्स ऑफ अ वेरी फेमस शायर राजेंद्र कृष्ण टू शो द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हार्ट व्हेन यू लॉक आईज विद अनदर। मैं तो तुम संग नैन मिला के सब कुछ हार गई, दिल की हर एक धड़कन तेरे नाम पे वार गई। लीजिए सुनिए साधना पे दर्शाया गया गीत फिल्म मनमौजी में, 1962 की फिल्म थी ये।

तो ये तो रहीं लता मंगेशकर, और अगले मोड़ पे आ रहे हैं वापस मुकेश। कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक। 1965 में आई थी फिल्म हिमालय की गोद में। माला सिन्हा एक ख्वाब जैसी दिखती हैं इस मूवी में। और जी हाँ, इससे ज़्यादा इस गीत का क्या इंट्रोडक्शन मैं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुरीला नगमा है।

ख्वाबों से प्यार करना तो शायरों का नसीब होता है, और शायर भी ऐसे होते हैं कि खुद को कभी बढ़ाते नहीं हैं। देखिए, अगले दो गीतों में एक तरफ एक बदनाम शायर है और दूसरी तरफ एक ऐसा शायर है जो खुद ही कह रहा है कि मैं शायर तो नहीं। चलिए ये दो गीत सुनिए। पहला गीत है फिल्म नमक हराम से और दूसरा गीत है फिल्म बॉबी से। दोनों में शायरों की एक ही उलझन है और एक ही तमन्ना है।

तो ये तो रहे आनंद बख्शी के बोल बैक टू बैक गीतों में, पहले नमक हराम में और फिर बॉबी में।

कब तक जिंदगी का साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, किसी को क्या मालूम। पर दोस्तों, जब श्वेतल देसाई साहब की फरमाइश आती है तो हम दोनों को ये अग्री कर लेना चाहिए कि वो बहुत ही खूबसूरत गाने फरमाइश कर लेते हैं। आप सबका भारत FM पे बहुत बहुत स्वागत। यह है प्रोग्राम फरमाइश। कोलंबस, सिंसिनेटी, फेयरबॉर्न, लवलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सरे, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, सब लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत। अब देखिए अगले मोड़ पर क्या खूबसूरत नगमा है, क्योंकि अगर आपने ये लाइफ फिलॉसफी नहीं अडॉप्ट की है तो फिर तो मुश्किल है।

जयदेव यूज द जलतर अंग सो ब्यूटिफुली इन दिस मूवी. अगले मोड़ पर आपको श्वेतल देसाई के बाद प्रकाश पाई की फरमाइश सुनाता हूँ. बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने यह गीत गाया था. फिल्म का नाम था वादा. 2011 में रिलीज हुई थी अमीषा पटेल और जायद खान के साथ. मूवी तो ज़्यादा चली नहीं, पर यह गीत अगर आपके जहन में नहीं उतरता है तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी. सही कहा प्रकाश साहब.

मैं चैन उसका वो तिश्नगी है मेरी। दोस्तों आपको एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, इसका तिश्नगी का लिटरल मीनिंग है थर्स्ट या पार्च्डनेस, जो फिजिकल थर्स्ट होती है, द नीड टू ड्रिंक वाटर, द प्यासापन जिसको कहते हैं। बट ऑफ कोर्स द मेटाफोरिकल मीनिंग इज द डीप डिजायर, द यर्निंग, द क्रेविंग, द एम्बिशन, आरजू, तलब, ख्वाहिश। तिश्नगी, तिश्नगी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश आई हुई है, और ये फरमाइश आई है मुक्ता राय से। क्योंकि अगर आपको तिश्नगी है तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, राहत फतेह अली खान आपको समझाएंगे।

0: मैं तेनू समझावा कि मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने हैं। खैर, मुक्ता राय की फरमाइश से आगे बढ़ते हैं चंपा भरद्वाज की फरमाइश की तरफ। बहुत ही मेमोरेबल नगमा।
1: मैंने

0: साहब।
1: गुलजार और सलील चौधरी के मास्टरपीस से बढ़ते हैं हिमेश रेशमैया की तरफ, जिन्होंने ही यूज्ड अ सूफी रॉक ब्लेंड टू परफेक्शन इन द सॉन्ग। नमस्ते लंदन 2007 में आई थी और इस गीत की फिलॉसफी है कि लॉयल्टी टू वंस रूट्स एंड अ लव दैट ट्रांसेंड्स फिजिकल डिस्टेंस इज द की टू लाइफ। राहत फतेह अली खां और कृष्णा ब्योरा ने इस गीत को गाया था कि फासले मिटा सके ना हमारी मोहब्बत को, हर सांस में तेरी खुशबू, हर पल तेरा ही एहसास है, मैं जहां रहूं। फरमाइश है सुधीर मटानी साहब की।

What a lovely, lovely song. Sudhir Matani साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. तेरी याद साथ है. Destined connections. कभी कभी कुछ connections जो होते हैं वो destiny के लिखे हुए होते हैं. The feeling that we exist solely for someone else. So the next number is a hauntingly beautiful track by Asha Bhosle, composed by O.P. Nair. और विश्वजीत और शर्मिला टैगोर थे 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी में कि मैं शायद तुम्हारे लिए ही जमीन पर आया हूँ. मैं शायद तुम्हारे लिए ही ज़मीन पर आया हूँ. एक अधूरी ख्वाहिश का मुकम्मल साया लाया हूँ. मैं शायद तुम्हारे लिए ज़मीन पर आया हूँ. एक अधूरी ख्वाहिश का मुकम्मल साया लाया हूँ. ज़िंदगी की भीड़ में तुम्हें पहचान लिया मैंने. ज़िंदगी की भीड़ में तुम्हें पहचान लिया मैंने. सदियों की प्यास का आज मैं समंदर लाया हूँ.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: ये है भारत FM,
1: बजेगा भारत झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत झूमेगा भारत, गाएगा भारत गुनगुनाएगा भारत। दोस्तों आज हम आपके लिए गाते गुनगुनाते शो में नज़र पे बेस्ड सॉन्ग्स लेकर आए हैं, और कुछ हैं आपकी फरमाइश के, कुछ हैं हमारी चॉइस के, कुछ हैं बॉलीवुड से लिए गए, कुछ होंगी गज़ल्स इस प्रोग्राम में शामिल। काफ़ी वक्त हुआ कि शेर व शायरी की बातचीत कम हो गई है, तो टॉपिक कुछ ऐसा है जिस पर कि गज़ल की बातचीत भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बीच बीच में आपके लिए कुछ गज़ल्स और शेर व शायरी भी अगर मैं शामिल कर सकूँगा तो बहुत अच्छा होगा। तो यही कोशिश रहेगी दोस्तों। चलिए आपको ले चलूँ आज के सुहाने म्यूज़िकल सफ़र पे, और एक से एक खूबसूरत फरमाइशें हमें मिल चुकी हैं आप लोगों की तरफ से, और अगर आपने ट्यून इन किया है तो हमें मैसेज कीजिए कि आप ऑलरेडी ज्वाइंट हैं इस शो में, और अपने फरमाइशें अगर नहीं भेजी हैं तो लिख भेजिए। चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं आज के पहली पेशकश की तरफ, जो कि मैंने कुछ शेर व शायरी की बात की है, तो चलिए मैं ले चलूँ आपको एक गज़ल सुनवाता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ये जो गज़ल है उसके मैं आपको कुछ हिंट के साथ इसके शेर एक आध आपके लिए लेकर आया हूँ, आप बताइए अगर आपने सुनी है तो लिख भेजिए अपना जवाब कि ये कौन सी गज़ल है यहाँ पर। तो मैं आपसे फिर बातचीत करता हूँ, इसके बाद आप हो जाइए तैयार सुनने के लिए हिंट को और पहचानने के लिए। उनके

रुख पे उन्हीं का जमाल था, वो चल दिए तो रौनक शामों सहर गई। हमने बचाई लाख मगर, हमने बचाई लाख मगर, फिर उधर गई महफिल।

मगर फिर उधर गए महफिल में बार बार। चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा जवाब भी यहाँ दे दिया है, लेकिन अगर आपके जवाब हमारे जवाब से पहले आ गए तो क्या शानदार बनेगा मौसम समा। आइए सुनवाते हैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल गुलाम अली साहब की आवाज़ में।

काल से फिर आ गया हूँ मैं। तो गजल पेशी खिदमत है आगा बिस्मिल, गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा बीच में, उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से अगर ना मजा आया तो छोड़ दूंगा, ये वादा रहा, मगर गौर की जरूरत है। मैं

महफिल में बार बार किसी पर नज़र गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। दोस्तों, इसमें शेर एक से खूबसूरत शेर इसमें थे, और जो गायकी है गुलाम अली साहब की, क्या खेलते हैं ये क्लासिकल सिंगिंग के साथ में, हिंदुस्तानी क्लासिकल पे इतनी अच्छी कमांड इनको है। और अगर आप इनसे एक ही गज़ल कई बार सुने तो हर बार मुख्तलिफ अंदाज में ये पेश करते हैं। इनकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, सही जवाब हमें जिनकी ओर से मिला, उनका नाम है शालिनी सिंह फ्रॉम बदायूं। क्या बात है शालिनी जी, आपने इसको पहचान कर हमें एकदम सही जवाब लिख भेजा बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। चलिए आपको ले चलता हूँ अब फरमाइशी नगमों की तरफ। और हमारे साथ इस समय जो लिसनर्स ऑलरेडी ट्यून्ड इन हैं, उनके नाम हैं उमेंद्र सिंह साहब फ्रॉम शाहजहाँपुर, और ये अपने साथियों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। आप कंफर्म कीजिए उमी साहब कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज भी अपने साथियों के साथ या अकेले सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, ब्रजेश दीक्षित साहब शाहजहाँपुर, या फिर आप अभी ट्रैवल पे हैं आप कंफर्म कीजिए। पंकज सक्सेना साहब बरेली से, मनीष अग्रवाल जी, प्रीमा शर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं अमिताभ शर्मा जी के साथ, और स्पेशल दिन है आज या कल, इन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है या करने वाले हैं ऐसा मुझे जानकारी है, तो करते हैं उस बारे में बात थोड़ी देर में। हमारे साथ मोहम्मद रशीद साहब जुड़े हैं दिल्ली से, अभिजीत जी के साथ साथ सीमा जी और ज्योतिका आंटी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, शालिनी जी बदायूं से ऑफ कोर्स, सही जवाब दिया इन्होंने। शालिनी जी का जो है गज़ल्स में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है जहाँ तक कि मुझे लगता है इनके जवाबों से और इनकी फरमाइशों से, तो बहुत ही अच्छी फरमाइशें होती हैं इनकी। संजीव सिंह साहब फरीदाबाद से, सुप्रिया गुप्ता जी लखनऊ, पवन कुमार सिंह साहब न्यू दिल्ली, डॉक्टर संजीव कन्हौजिया आप कहाँ से जुड़ते हैं सर कंफर्म कीजिए, रवि गंभीर साहब, मधुसूदन दीक्षित जी, अरविंद कुमार साहब, मधुसूदन दीक्षित साहब भी बहुत सारे श्रोताओं के साथ सुनते हैं हमको, और कंफर्म करेंगे तो बताऊंगा, उनके नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। दीक्षित साहब यानी ब्रजेश भाई आप वापस आ गए हैं अपने ट्रैवल के बाद, सुनकर अच्छा लगा। शगुन साहब हमारे साथ जुड़े हैं उमेंद्र सिंह साहब के साथ, आरुष जी हैं हमारे साथ और यश ठाकुर हैं आज इनके साथ उमेंद्र सिंह साहब के साथ, तो ये अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ जुड़कर इस शो को सुन रहे हैं। क्या बात है उमेंद्र साहब, आइए दोस्तों अब मैं आपको ले चलूँ। हैं तो वैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे पास बहुत सारी गज़ल्स हैं जो लाइंड अप हैं, गज़ल्स के गाने भी हैं मेरी चॉइस के, लेकिन मैं आपको आपकी फरमाइश की तरफ ले चलता हूँ, जितना जल्दी ले चलूँगा उतनी ज़्यादा कवर कर सकूँगा सॉन्ग्स, तो यही सोचकर मैं आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाने जा रहा हूँ अगला गाना। और ये गाना हमने लिया है इनके गाने की फरमाइश पर बेस्ड ही करके ही हमने आज का टॉपिक डिसाइड किया था दोस्तों, और ये है अभिजीत चटर्जी साहब के साथ साथ सीमा जी और ज्योतिका आंटी की सजेशन पर आज का टॉपिक लिया गया है नज़र, तो हम ऐसा एक गाना इनका लेकर आए हैं अगला गाना जो है, जो कि आप सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको वो गाना, जो कि शानदार तरह से मतलब गाया गया है, उसको कंपोज किया गया है और आपने बहुत पसंद किया होगा जब सुना होगा, तो वही यादें ताज़ा करते हैं। आइए अभिजीत जी और सीमा जी की फरमाइश पर अगला गीत जो हम सुनवाएं आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको,

0: समझ गए होंगे दोस्तों आप, आइए सुनते हैं ये पहली फरमाइश अब।
1: बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में

दोस्तों, ये थी फरमाइश अभिजीत भाई के साथ साथ सीमा जी और ज्योतिका आंटी की लखनऊ से। और आप समझ गए होंगे कि कितना अच्छा ये गाना है, जिसकी कि इन्होंने काफ़ी वेट किया कि कब ऐसा टॉपिक आए कि इस गाने को लिया जाए, क्योंकि ये हमारी तरह उत्तम कुमार साहब और शर्मिला जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उत्तम कुमार साहब कलकत्ता यानी कि बंगाल को बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार एक्टिंग रही है इन्होंने हिंदी फिल्में जो जो की हैं, क्या लाजवाब उसमें एक्टिंग रही है इनकी। और गाने तो आपने जैसा कि एक गाना सुना ही है अभी, ऐसे कई गाने मैंने सुने हैं इनके ऊपर फिल्म आए हुए जो कि बहुत ही शानदार और बहुत पॉपुलर हुए। तो उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, आनंद आश्रम फिल्म का नाम। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले जी की थी इसमें। दोस्तों, जो लिरिक्स थे इसमें वो थे इंदिवर साहब के लिखे हुए बोल थे, और म्यूज़िक डायरेक्शन था इसमें श्यामल मित्रा जी का। क्या बात है साहब, शानदार शानदार म्यूज़िक इसमें। तो आपने ज़रा सा हिंट सुना और सही जवाब हमें लिख भेजे, क्या बात है दोस्तों। चलिए, आपके सही जवाबों के बारे में बात की जाए तो शालिनी सिंह जी ने, पवन कुमार सिंह साहब ने, प्रेमा शर्मा जी और अमिताभ शर्मा जी के साथ साथ पंकज सक्सेना जी ने सही जवाब लिख भेजा हमें। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द राइट आंसर। इस बीच हमारे साथ दीपेश पाठक जुड़ गए हैं बरेली से, और एज़ ऑलवेज़ उन्होंने हमारे साथ एडिशनल डिटेल्स शेयर की हैं फिल्म के बारे में, और इनके भेजे हुए डिटेल्स से मैं ये देख सकता हूँ कि उसमें अशोक कुमार साहब भी थे इस फिल्म में, शक्ति फिल्म्स यानी शक्ति सामंत साहब की प्रोडक्शन ये थी फिल्म में। अशोक कुमार, उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर, राकेश रोशन, मौसमी चटर्जी भी थी इसमें, क्या बात है। वाह, थैंक यू सो मच दीपेश साहब, आपने जो डिटेल्स शेयर की हैं। आपको दोस्तों मेरा वॉल्यूम और मेरी आवाज़ का और म्यूज़िक का वॉल्यूम क्या ठीक से सुनाई दे रहा है, कुछ कमी तो नहीं? सुप्रिया जी लखनऊ से कुछ इन्होंने मेंशन किया है, तो दोस्तों आप बताइए आपको अगर लगता है तो मैं कुछ ट्वीक करूं इसमें, नहीं तो आप कंफर्म कीजिए कि आप सुन सकते हैं, वॉल्यूम में कोई भी यहां पर कमी नहीं है। देन आई विल सजेस्ट सुप्रिया जी, आप एक बार अगर आप ब्राउज़र से यानी कि रेडियो गार्डन से ज्वाइन किए हैं तो आप एक बार रीस्टार्ट करके देखिए और फिर बताइए कि कुछ फ़र्क पड़ा उसमें। विकास साहब ने कंफर्म किया कि आवाज़ बिल्कुल, वॉल्यूम सब ठीक है। थैंक यू सो मच विकास साहब, आपकी टाइमिंग भी लाजवाब है कंफर्म करने की, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए, अब ले चलता हूँ आपको अगले फरमाइशी गाने की तरफ, और छोटा सा हिंट फिर बताता हूँ कि इनकी फरमाइश की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो हिंट इस तरह से है दोस्तों,

0: दोस्तों, ये है फरमाइश विकास मौर्य साहब के साथ साथ शेखर अग्निहोत्री और डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री की। सुनते हैं इस खूबसूरत फरमाइशी गाने को और फिर बात करते हैं। आपने पहचाना इसको, तब उसके बारे में बात करते हैं आपसे।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

झुक गया आसमान फिल्म से लिया गया ये नगमा था विकास मौर्य जी और शेखर अग्निहोत्री साहब के साथ साथ डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री जी का फरमाइशी नगमा। और इस फिल्म में सायरा बानो और राजेंद्र कुमार साहब को देखा गया था मुख्य भूमिकाओं में। लता मंगेशकर जी की ये खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी दोस्तों इस गाने में, और जुबली कुमार कहा जाता था राजेंद्र कुमार साहब को, ऐसा याद दिलाया है दीपेश साहब ने। इस बीच हमारे साथ श्रेष पाठक, अर्चना जी और दिवीना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लॉन्ग आइलैंड यानी न्यूयॉर्क से, और कंफर्म किया था उन्होंने कि आवाज़ उनको क्लियर आ रही है। मधुसूदन साहब ने कंफर्म किया और हमारे कई और श्रोताओं ने इस बात को कंफर्म किया कि वह मुझे सुन सकते हैं, वॉल्यूम में कोई इशू नहीं है। तो आप प्लीज़ रीस्टार्ट करके देखें एक बार ब्राउज़र, और अगर फिर भी कोई इशू है तो फ़ोन को या आप डिवाइस जिससे यूज़ करके आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए और कंफर्म मुझे कीजिए कि आप अब सही से सुन सकते हैं मुझे। डॉक्टर संजीव कनौजिया हमारे साथ शाहजहाँपुर से जुड़ते हैं साहब, ऐसा कन्फर्मेशन आया है, थैंक्स फॉर द डिटेल्स ब्रजेश भाई। तो दोस्तों सही जवाब हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया उनके नाम हैं पवन कुमार सिंह साहब न्यू दिल्ली से, शेखर अग्निहोत्री साहब ऑफ कोर्स, और शालिनी सिंह जी के साथ साथ प्रेमा शर्मा जी और अमिताभ शर्मा जी, इन्होंने सही जवाब लिख भेजा दीपेश पाठक साहब के साथ साथ, क्या बात है। और इस समय दोस्तों हमारे साथ मुझे लगता है शिफाली, डॉक्टर शिफाली श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं इस गाने के दौरान, जैसा कि बट कन्फर्मेशन इज़ येट टू बी रिसीव्ड। सो शिफाली जी, इफ़ यू आर ऑन द शो देन प्लीज़ कन्फर्म सो दैट कैन टॉक अबाउट दैट। चलिए दोस्तों आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी गीतों की तरफ। बातें जैसे कि शेर व शायरी की होती हैं तो कुछ उसमें इस तरह का, हाँ मतलब नज़र से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उन पर बेस्ड अगर कुछ नज़म है, गज़ल्स हैं, शेर व शायरी है, वो आपके जहन में, तो आप वो शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगा शामिल करने की उन सबको भी। तो इस तरह का ही मुझे कुछ याद आ रहा था अभी, तो इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी यहाँ पर। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है,

है। दोस्तों, ये जगदीश सिंह साहब के साथ चित्रा सिंह जी की गाई हुई गज़ल है। अगर आप कहें, कंफर्म करें, तो मैं आपके लिए ये लाइनअप करके रखूँगा, लेकिन मुझे ऐसे ही शेर याद आया तो मैंने उसको यहाँ पर आपके पेश नज़र किया। चलिए, मैं आपको आपकी ही फरमाइश का अगला नगमा सुनवाने जा रहा हूँ अब, और आप कंफर्म करेंगे तो ये गज़ल भी सुनवाऊँगा जो मैंने आपको थोड़ी बहुत जिसकी शेर व शायरी आपके सामने रखी। तो चलिए सुनते हैं अगला फरमाइशी नगमा अब। तो आइए, अब मैं एक कंफर्मेशन के इंतज़ार में हूँ यहाँ पर, लेकिन चलिए सुनवाई देता हूँ मैं पहले ये गाना, फिर करते हैं बात कुछ और। तो अगला जो हिंट आ रहा है आपके पेश नज़र, तैयार हो जाइए पहचानने के लिए, और फिर बात करते हैं कि किन की फरमाइश पर हम आपको ये सुनवा रहे हैं। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में

दोस्तों, देवेंद्र कुमार साहब के साथ साथ शालिनी सिंह जी की ये फरमाइश आई है दोस्तों, जिसका मैंने हिंट दिया आपको, फिर बताता हूँ, सुनवाता हूँ आपको ये गज़ल या गाना, बात करते हैं इसके बाद। ये शानदार फरमाइश सुनते हैं पहले, फिर बात करेंगे इसके बारे में आपके साथ।

एतबार फिल्म का ये नगमा आपने सुना भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की खूबसूरत आवाज़ों में, और ये जिनकी फरमाइश थी उनमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनके नाम मैं बताना अभी बाकी है मुझे बताना। तो उनमें नाम है उमेंद्र सिंह साहब और डॉली अरोरा, संजीव अरोरा। आज उमेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। इनके साथ हैं शगुन सिंह और आरुष यश ठाकुर। तो ये इनकी फरमाइश भी थी दोस्तों। देवेंद्र कुमार और शालिनी सिंह जी की साथ साथ, तो आइए चलिए तो आपको ले चलूँ अगले डिटेल्स की तरफ कि जिनके जवाब हमें मिले सही जवाब उनके नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको कुछ शेर सुनाए थे वो थे कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, तो उसको शालिनी सिंह जी ने पसंद किया। चलिए सही जवाब भी इन्होंने ही दिया है इस गाने के लिए, अपनी ही फरमाइश का था लेकिन इनको पता नहीं था कब आने वाली है। तो पहले सबसे पहले इनका जवाब और पवन कुमार सिंह साहब का, दीपेश पाठक साहब का, फिर प्रेमा शर्मा जी और अमिताभ शर्मा जी। तो पंकज सक्सेना साहब का सही जवाब, राजीव कुमार सिंह साहब का सही जवाब, शेखर अग्निहोत्री साहब, सही जवाबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को दोस्तों। यहाँ पर अब ब्रजेश साहब की कलम कुछ बातें करना चाह रही है। तो कहते हैं, नज़र जो झुकी तो अदा बन गई, नज़र जो उठी तो हया बन गई। आप इसको थोड़ा बहुत फेर बदल कर लीजिए, आप समझ गए होंगे अगर जल्दी में लिखा जाता है तो। जनरली नज़र झुकती है तो हया बनती है, और झुक के उठती है तो अदा बन जाती है। तो थोड़ा बहुत जल्दी में अगर इधर उधर होता है, लेकिन आप समझिए कि कलम जो है क्या बोल रही है इनकी। नज़र जो मिली तो होश ले गई, नज़र की दास्तां मत पूछो हमसे, जाने कितनों को दीवाना बना गई। क्या बात है, ऐसे ही लिखते रहिए ब्रजेश भाई, और शो के बीच में जब जब अच्छी बातें निकल के आती हैं तो बहुत अच्छा माहौल बनता है। तो इस बीच हमारे साथ कपिल जाम साहब जुड़े हैं, और कहाँ से आप जुड़ते हैं एक बार कंफर्म कीजिए कपिल साहब। मैं आपको दोस्तों ले चलता हूँ अगले फरमाइशी गीत की तरफ, और अब हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा नगमा है, और जिनकी फरमाइश पर है मैं आपको बताता हूँ आप थोड़ी देर में। पहले आप इस हिंट को पहचानिए और फिर करते हैं बात इस गाने के बारे में। ये गाना बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इसके हिंट इस तरह से है,

समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये है फरमाइश प्रेमा जी और अमिताभ शर्मा जी की, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको, और इनकी फरमाइश हम सुनवाते हैं। प्रेमा जी आप कंफर्म कीजिए कि कौन सी डेट को आपने सेलिब्रेट किया या कर रहे हैं आज, या कर चुके हैं कि करेंगे, तो डेट का पता नहीं है, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। चलिए दोस्तों सुनते हैं प्रेमा जी और अमिताभ साहब की फरमाइश पर यह खूबसूरत नगमा।

आशा भोसले की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत नगमा सुना, साधना, और संजय खान साहब को इस गाने में देखा गया था। एक फूल दो माली फिल्म से लिया गया था ये नगमा। दोस्तों, क्या खूबसूरती से गाया। और दोस्तों, इसकी तर्ज बनाई थी रवि ने, और इस फिल्म में बला साहनी को भी देखा गया था इन सब के साथ, जिनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए। साधना नाम से जो पॉपुलर थी, उनका पूरा नाम है साधना शिव दसानी। अगर आपने ये बात पहले जान ली होगी तो रिफ्रेशर है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ साधना के नाम से ही उनको जाना है तो उनका सरनेम अब याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आपको अब ले चलता हूँ सही जवाब लिखने वालों के नामों की तरफ। और सही जवाब हमें लिख भेजे हैं जिन्होंने सही जवाब लिख भेजे, उनके नाम हैं शालिनी सिंह, शेखर अग्निहोत्री। शेखर साहब, थोड़ा सा और जहमत उठाइए कुछ और वर्ड्स लिख भेजिए हिंट में तो अच्छा रहेगा थोड़ा। पवन कुमार सिंह साहब न्यू दिल्ली से, और कनौजिया साहब, डॉक्टर कनौजिया नहीं, कपिल जाम साहब जो कि बरेली से ज्वाइन करते हैं, उन्होंने सही जवाब लिख भेजा। और दीपेश पाठक बरेली से, शेफाली श्रीवास्तव रायबरेली से, इन्होंने सभी ने, प्रेमा शर्मा जी और अमिताभ जी, इन्होंने भी अपनी फरमाइश के गाने को सही पहचाना। सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक फूल दो माली जो एडिशनल डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ दीपेश साहब की जानिब से मिली हैं, 1969 की ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, देवेंद्र गोयल ने इसका निर्देशन किया था बताया गया, और 1969 की सेकंड हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई करने वाली फिल्म थी वो ये फिल्म थी एक्चुअली। तो आराधना और दो रास्ते फिल्म थी जिन फिल्म्स ने बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पर जो है परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो चलिए दोस्तों, ये थी डिटेल्स इस फिल्म के बारे में, एक फूल दो माली के बारे में। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, मधुसूदन दीक्षित साहब, आप नाम शेयर कीजिए आपके साथ जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी गाने की तरफ। इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं कविता राठौर जी, और उनके साथ साथ गीता सिंह आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं, और छोटे बच्चे पीहू और तक्षवी हमारे साथ हैं सुदीप साहब के साथ। क्या बात है, वेलकम टू द शो कविता जी एंड योर फैमिली। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप लिख भेजिएगा। अच्छा, एक बात और, साधना जी का मैंने पूरा नाम बताया, आपने सुना होगा साधना शिव दसानी, और ये बात और एडिशनल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दीपेश साहब की भेजी हुई हैं। साधना और बबीता आपस में चचेरी बहनें थीं, ये एक जानकारी दीपेश साहब ने बहुत ही शानदार शेयर की है हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ बीके मिश्रा जी जुड़े हैं। मिश्रा साहब, आप कहाँ से ट्यून इन कर रहे हैं थोड़ा सा कन्फर्म कीजिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अगर डिटेल्स निकाल सकूँ तो मैं शेयर करता हूँ सभी के साथ, लेकिन आप कन्फर्म कीजिए। आई थिंक आई डोंट हैव दैट डिटेल फ्रॉम योर एंड, सो प्लीज़ डू शेयर वेयर यू हैव ट्यून्ड इन फ्रॉम। और गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम टू द शो गाते गुनगुनाते, जिसका है नाम, और हम आपको सुनवा रहे हैं नज़र से रिलेटेड सॉन्ग्स एंड गज़ल्स। चलिए आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी नगमों की तरफ दोस्तों, और अब आपको मैं सुनवाता हूँ एक बहुत शानदार पेशकश है जो
पहले इसका छोटा सा हिंट दूंगा, फिर बताऊंगा किनकी फरमाइश पर ये सुनने जा रहे हैं आप गाना। हिंट इस तरह से है,

ये है दीपेश पाठक साहब की फरमाइश दोस्तों, और आप समझ गए कितना शानदार गाना आने वाला है ये। आइए एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत नगमे को अब।

महान फिल्म से लिया गया ये बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत नगमा था दीपेश पाठक जी की रिक्वेस्ट पर। और ये मुझको कई ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि वाकई में बहुत शानदार हैं और मेरी लिस्ट में ऐड हो जाती हैं कि मुझको पसंद हैं, लेकिन कहीं खो सी गई होती हैं, बहुत शुमार है जो कि इतने सारे गाने हैं जो कि जहन में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी फरमाइश आती है दीपेश साहब, ये मुझे एक और गाने की याद दिलाता है जो आपने ही मुझे बताया था कि ये लेना चाहिए मुझको। और वो मैं बताता हूँ कुछ देर में आपको, वो अनिल कपूर साहब पर फिल्माया गया था और बहुत ही शानदार गाना है। तो इस गाने को भी मैंने इसी तरह से संजो के रखा है जिस तरह से उस वाले गाने को किया था मैंने। तो वो गाना कुछ इस तरह से था ना।

अर्गी। तो दोस्तों ये था दीपेश साहब का गाना सुझाया हुआ और याद दिलाए हुए मुझको, तो वो और ये अभी मैं लिस्ट एक तैयार कर रहा हूँ दीपेश साहब, अच्छे अच्छे गाने जो किसी ज़माने में सुने थे हमने और बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी तक शामिल नहीं कर सका था उसको। थोड़ा सा मैं अपनी लिस्ट में रखूँगा शॉर्ट लिस्ट करके और तैयार करूँगा। तो थैंक यू सो मच दीपेश जी, आपने जो ये गाने की रिक्वेस्ट भेजी तो इससे काफ़ी कुछ यादें ताज़ा हुई पिछले साल की भी। आइए दोस्तों इस बीच हमारे साथ जो जुड़कर हमारे शो को सुन रहे हैं उनके नाम हमें मिल चुके हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार हमारा। हमारे साथ मधुसूदन दीक्षित साहब जो कि अपने साथियों के साथ सैर पे थे, मतलब कि वॉक करने के लिए निकले हुए थे, अब वॉक ख़त्म करके बैठ कर सुन रहे हैं ग्राउंड में हमारे शो को। और ये जिनके साथ सुन रहे हैं उनके नाम हैं विनोद गुप्ता, हरभजन सिंह दुआ, राजेश यादव, प्रद्युमन गुप्ता, प्रमोद पांडे, प्रमोद यादव, दर्शन सिंह बजाज, सुरेंद्र सेठी, राकेश गुप्ता, सत्यपाल यादव, नेताजी अंकुर यादव जी। इन सभी के साथ मधुसूदन दीक्षित साहब आप हमारे शो को सुन रहे हैं, क्या बात है। सभी को बहुत बहुत सभी का स्वागत है शो में और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इस बीच हमारे साथ संदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं उदयपुर से। गुड मॉर्निंग टू यू संदीप साहब, कैसे हैं आप, कैसा वेदर है? हाँ सुना था कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी प्रयागराज में, ऋतुराज सिंह या नीति राज सिंह साहब ने फरमाया था, तो आपके शहर में कुछ ऐसा देखा गया तो बताएं। क्या बात है, बताइए कि मानसून तो नहीं पहुंचा है, मुझे पता है अभी साउथ में है कहीं, हैदराबाद तक कुछ बारिश हुई है अच्छी, लेकिन नॉर्थ में अभी तक उतने वेग से मतलब देखा नहीं गया है थंडरस्टॉर्म्स और रेन। आप बताइए कि आपके शहर में क्या हालचाल हैं, फिर करते हैं बात आपके साथ। चलिए दोस्तों आपको ले चलूँ अगले नगमों की तरफ और अब एक और शानदार पेशकश मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये किनकी फरमाइश पर है वो बताता हूँ आपको। इतना शानदार गाना है ये कि मैं एक्साइटेड हूँ इसको लाइनअप करने के लिए, मैंने अच्छे से इसको तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन वेट कर रहा हूँ कि माहौल कुछ और अच्छा बने, तो ये खूबसूरत गाना आपके लिए मैं लेकर आऊँ। और दोस्तों आपकी अगर फरमाइश हमारे तक नहीं आई है तो आप लिख भेजिए आप कौन से गाने सुनवाना चाहते हैं, नज़र पे बेस्ड हैं तो बहुत अच्छा है। ये कोशिश है कि टॉपिक पर जो गाने हैं वो लिए जाएं। पहले हमारे साथ रियान हसन खान साहब जुड़ चुके हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं, आई एम सो सॉरी अगेन सर दैट यू वर ऑन द शो, आई स्क्रोल्ड सो मच इन द लिस्ट दैट आई कुड नॉट रिमेंबर। तो आपकी फरमाइश भी हमारे पास है रियान सर, सो एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट आई विल बी प्लेइंग इट, बट इट्स मैटर ऑफ वेटिंग फॉर लिटल मोर। लेकिन इस बीच मैं जो गाना आपको सुनवाने जा रहा हूँ, जिसकी हिंट मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी इस कुछ है यहाँ पर। चलिए मैं आपको हिंट पहले सुनाता हूँ, फिर गाना लाइनअप भी हाथ के हाथ करना पड़ेगा मुझको। ये

मेरे सनम फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। 1965 की रिलीज़ फिल्म थी ये, और ओपी नैयर का इसमें संगीत था दोस्तों। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और हमें सही जवाब जिन्होंने दिए उनके नाम बताता हूँ आपको। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़े हैं, प्रभात, रंजन साहब ससरम बिहार से, और हमारे साथ जो और श्रोता जुड़े हैं उनके नाम हैं कमांडेंट इकबाल हसन साहब, CRPF में कार्यरत हैं शायद, अगर मुझे ये जानकारी सही है तो, ब्रिजेश वर्मा साहब, संदीप सिंह जी की फरमाइश पर हमने लास्ट टॉपिक लिया था चांद, जो कि बहुत ही शानदार तरह से आपने अप्रिशिएट किया दोस्तों। संदीप सिंह साहब उदयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कूल वेव चल रही है वहाँ पर आज, मतलब कि राहत मिली है गर्मी से उदयपुर के एरिया में, क्या बात है। कुछ बारिश तो प्रयागराज में भी हुई है इतना मुझे पता है, आप बताएं आपके प्रांत में क्या मौसम है, कैसा, कुछ राहत मिली कि नहीं मिली। हमारे साथ प्रीतम बंटू साहब जुड़े हैं, डॉक्टर रचित मोहन जी जुड़े हैं, महेंद्र दुबे साहब बसुलिया से जुड़े हैं, क्या बात है। और सही जवाब देने वालों के नाम शिफाली श्रीवास्तव यानी डॉक्टर श्रीवास्तव, और अमिताभ शर्मा, प्रेमा शर्मा, ब्रिजेश दीक्षित, पवन कुमार सिंह साहब का जवाब सबसे पहले आया, और उनके बाद दीपेश पाठक साहब का, शालिनी सिंह का, फिर उसके बाद जो मैंने नाम लिए उनका जवाब मिले, संदीप सिंह साहब का जवाब सही जवाब, क्या बात है। आइए दोस्तों, इसमें मैंने एक चीज़ देखी इस फिल्म में, मेरे सनम में प्राण साहब ने इसमें जो किरदार निभाया है, जनरली वो नेगेटिव रहता है, लेकिन वो इस फिल्म में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, अगर आपको याद है, लेकिन अगर आपने देखे हुए बहुत टाइम हो गया इस फिल्म को, तो आप देखें एक बार कि प्राण साहब का जो गेटअप इसमें दिख रहा था मुझे, गजब, मतलब कि हीरो से कहीं कुछ कम नहीं, और अदाकारी तो आप जानते ही हैं प्राण साहब की, तो क्या बात है। चलिए मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताता हूँ जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे श्रोता। हमारे साथ दोस्तों राजेश यादव जी भी जुड़े हैं, और ब्रिजेश साहब, मधुसूदन जी और राजेश यादव जी ट्रैवल पे थे और वापस आके इन्होंने हमारे शो में ज्वाइन किया, क्या बात है। दोस्तों कुछ डिटेल्स हमारे साथ आप ही ने शेयर की हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। हाँ, तो एक गाना है जो कि शालिनी सिंह जी याद दिला रही हैं, तो मैं उसका आपको मैं सुनवाने नहीं जा रहा, बट इन्होंने ज़िक्र किया इसलिए मैं इसको इस प्रोग्राम में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। तो शालिनी सिंह एक बहुत ही अच्छा गाना की तरफ हिंट दे रही हैं, आप बताइए अगर आपको ये पता है तो। सुनी मेरी सदा तो किसी यकीन से, घटा उतर के आ गई।

क्या शानदार गाने की याद दिलाई आपने शालिनी जी। ओपी नैयर साहब के म्यूज़िक में घोड़े की टापों की लय जो बहुत यूज़ की गई थी उनके म्यूज़िक डायरेक्शन में, ऐसा बताया है शालिनी जी ने। ऑलमोस्ट हर सॉन्ग में आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, ये बताती हैं। पवन कुमार सिंह साहब भी कुछ इत्तेफाक रखते हैं इसी बात से, कहते हैं कि ओपी नैयर साहब की ये ख़ास धुन थी जो घोड़े की टाप की आवाज़ निकालती है और इसे कई अच्छे खूबसूरत गानों में इस्तेमाल किया गया है। एब्सोल्युटली सर, क्या बात है। और आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैंने आपको हिंट दिया है, वो भी मेरे सनम फिल्म से है। और इस बीच हमारे साथ सलमान रिजवी साहब और नीलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हार्टफोर्ड से, और इन्होंने हिंट को पहचाना और बताया। पुकारता चला हूँ मैं, जैसा कि शालिनी जी ने अभी फरमाया था, शेफाली जी ने हिंट पहचाना, पवन कुमार सिंह साहब ने, प्रेमा जी और अमिताभ जी ने। खूबसूरत आवाज़ वीजे भाई शालिनी सिंह जी अप्रिशिएट करती हैं जो गाने का हिंट दिया, थैंक यू सो मच शालिनी जी। आइए दोस्तों, मैं आपको अब ले चलता हूँ एक गज़ल की तरफ। और मैंने अभी मेंशन किया था कि वेडिंग एनिवर्सरी है अमिताभ जी और प्रेमा जी की, तो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ अगली गज़ल है। शौक रखते हैं अमिताभ साहब भी गाने का, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है इनका भी, और इनकी आवाज़ में मैं आपको सुनवाता हूँ क्योंकि ये पेशकश है अमिताभ साहब की तरफ से प्रेमा जी के लिए। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे आप इसको एक गिफ्ट ही समझ लें प्रेमा जी। सो देखिए अमिताभ जी क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद मैं यही जो है गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। तो सुनिए पहले अमिताभ शर्मा जी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रेमा जी के साथ क्या कहना चाहते हैं ये प्रेमा जी से। तो सुनिए पहले

0: दोस्तों
1: आपने सुना, सब्सक्राइब टू www.youtube.com/venus।
0: ये इस गजल को जो कि तलत अजीज साहब की गाई हुई गजल थी और अमिताभ शर्मा जी ने डेडिकेट किया इसको प्रेमा जी के लिए, क्या खूबसूरत अंदाज है इसमें और इन्होंने गाया भी बहुत प्यारा था और किसी वजह से इसको होल्ड किया मैंने और आज का ओकेजन देखकर इसको मैंने शामिल किया शो में। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी खूबसूरत गज़ल जो है इतने खूबसूरत ओकेजन पे शामिल की जा सकी। तो वंस अगेन वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और कीप एन्जॉइंग योर डे एंड वीक एंड ईयर्स टुगेदर। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ अगले कुछ फरमाइशी गीतों की तरफ, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो जुड़ गए हैं उनके नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। समित चैटर्जी कोलकाता से, गजेंद्र दिघे, देविका दिघे, मास्टर सोहम और मास्टर समर दिघे के साथ मुंबई से जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी गाने की तरफ और आप हो जाइए तैयार ये गाना पहचानने के लिए जो आ रहा है आपकी पेश नज़र।

0: ला ला ला। दोस्तों ये है फरमाइश संजय गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, संदीप सिंह फ्रॉम उदयपुर, मधुसूदन दीक्षित फ्रॉम शाहजहाँपुर एंड संजीव अरोरा एंड डॉली अरोरा, मास्टर अर्जुन फ्रॉम गाज़ियाबाद।
1: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर।

0: डर फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, और क्या शानदार फिल्म थी, क्या जानदार एक्टिंग थी इसमें, स्पेशली किंग खान यानी कि शाहरुख खान साहब की इसमें एक्टिंग। नेगेटिव रोल को अपनाया इन्होंने और उसको क्या बखूबी निभाया और अपनी अमिट छाप छोड़ दी इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में। तो दोस्तों बहुत ही शानदार फिल्म थी, 1993 में रिलीज़ हुई थी। एक इसमें रोमांस था, इसमें साइको थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी ये फिल्म। यश चोपड़ा ने अपने बैनर में ये रिलीज़ की थी, और इस फिल्म में सनी देओल, जूही चावला को देखा गया था शाहरुख खान साहब के साथ, और रीमा लागू, अनुपम खेर भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों होली पर एक गाना बहुत शानदार है इस फिल्म में जो शामिल है, दिलीप ताहिल साहब हैं इसमें, एक बहुत ही शानदार रोल उन्होंने निभाया एक आर्मी ऑफिसर यानी नेवी ऑफिसर का, उन्हीं के बेटे का रोल किया है शाहरुख खान साहब ने इसमें। याद आ गया होगा ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। तो फिल्म में किरण यानी कि जूही चावला को उसका जुनूनी प्रेमी राहुल यानी कि शाहरुख खान साहब उसका पीछा करता है, जो तब पागल हो जाता है जब नौसेना अधिकारी सुनील यानी कि सनी देओल से सगाई कर लेती है और किरण को ज़बरदस्ती अपने लिए दावा करने का फैसला कर लेता है। तो ये डिटेल्स दीपेश पाठक साहब की तरफ से हमें प्राप्त हुई, तो मैंने आपके लिए ये शेयर की हैं। दीपेश साहब ये भी बताते हैं कि शाहरुख शायद अकेले ऐसे सफल अभिनेता हैं हिंदी फिल्मों में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेगेटिव रोल्स से की थी, जैसे बाजीगर, डर और अंजाम, एक के बाद एक तीन फिल्म उन्होंने नेगेटिव रोल्स निभाए उसमें, लेकिन फिर भी लोगों के, व्यूअर्स के दिलों में अपने लिए एक ख़ास जगह बना ली अपनी एक्टिंग के ज़रिए, और आज भी राज करते हैं वो सभी के दिलों पर, क्या बात है। देखिए साहब, इस बीच में ब्रिजेश पाठक साहब ने कुछ फरमाया है, कहते हैं विजय भाई ख़ास आपके लिए, जादू है तेरी नज़र, बहुत बड़ा है तुम्हारा जिगर, तू है ग्रुप का मिस्टर, तू ले लेता है सबकी खबर। चलिए साहब क्या बात कही आपने, मज़ा आ गया। ब्रिजेश भाई थैंक यू सो मच, एंड आपका भी गाना लाइंड अप है ब्रिजेश भाई, आप इतना अच्छे से हेल्प करते हैं यहाँ पर शो में और लिखते हैं, बढ़िया से लाइंस आपकी कलम से निकलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और चार चांद लग जाते हैं शो में। तो दोस्तों मैं आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी गाने की तरफ, उससे पहले बता देना चाहूँगा कि हमारे हिंट को सुनकर सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम जो हैं वो हैं शालिनी सिंह, दीपेश पाठक, पवन कुमार सिंह, शिफाली श्रीवास्तव, संजय गुप्ता जी और वीना द्विवेदी मैम। हमारे साथ दोस्तों कुछ और श्रोता जुड़े हुए हैं जिनके की नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका नाम है प्रद्युमन गुप्ता, राजेश अग्निहोत्री, दर्शन सिंह दुआ साहब कह रहे हैं ये भी हमको सुनते हैं, हमारे शो को सुनते हैं। भाइयों भाई भी जुड़ गए हैं शो में, भाइयों भाई नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत है शो में। चलिए दोस्तों आपको ले चलूँ अगले नगमों की तरफ, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाता हूँ भारत FM की तरफ से एक बहुत खूबसूरत और छोटा सा संदेश।
1: This is Bharat FM.
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत FM, झूमेगा भारत, गाएगा भारत, गुनगुनाएगा भारत। आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते शो में नजर पे बेस्ड सॉन्ग्स। कुछ हैं आपकी फरमाइश के और कुछ हमारी चॉइस के। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझको, यानी कि मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे वीजे, और आपको ले चलता हूं अगले फरमाइशी नगमों की तरफ। दोस्तों तो कुछ फरमाइशें मैं आपके लिए लाइन अप करके रखे हुए हूं, तो चलिए मैं आपको अगली फरमाइश जो सुनवाने जा रहा हूं, एक्चुअली काफ़ी वेट किया है मैंने, अभी तक देखा नहीं गया है उनको जिनकी फरमाइश लाइंड अप है, और मैं फिर थोड़ा और वक्त देता हूँ कि अगर वो आए शो में तो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए अगला सॉन्ग मैं उनके लिए, उनके तरफ से जो भेजा गया है जो हैं इस शो में, वो सुनवाने जा रहा हूँ अब। कुछ श्रोता हैं जो कंफर्म नहीं कर सके हैं, बहुत ही अच्छी फरमाइशें हैं उनकी भी, लेकिन चलिए जो हैं इस समय शो में उनके पहले सुन लेते हैं हम फरमाइश को। कुछ तो ऐसे गाने हैं जिनके की बारे में कुछ ऐसा सुना है कि ये गाने तो होने ही चाहिए शामिल शो में, तो उनमें से एक गाना मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाएगा इसके बाद। तो मैं आपको दे रहा हूँ अब हिंट, और आप हो जाइए तैयार इसको पहचानने के लिए गाने को।

बादशाह हो फिल्म से लिया गया ये गाना आपने सुना, नुसरत राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में, और इसमें इनका साथ निभाया था तनिष्क ने, अजय देवगन और इलियाना को इसमें देखा गया था मुख्य भूमिकाओं में दोस्तों। तो इस बीच हमारे साथ रेनू यादव और डॉक्टर उदित यादव जी जुड़ गए हैं और इन्हें ये पसंद आया। गुड मॉर्निंग टू यू बोथ एंड योर कलीग्स और नेबर्स हु आर ट्यून्ड इन अलोंग विद यू। रेनू जी, कंफर्म इफ़ यू हैव दोस किड्स विद यू। तो चलिए दोस्तों, मधुसूदन दीक्षित साहब ने एक संदेश शेयर किया हमारे साथ, कहते हैं कि हमारे संरक्षक दर्शन सिंह बजाज साहब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि ये शो के बारे में कह रहे हैं। थैंक यू सो मच दर्शन जी, और थैंक्स मधुसूदन जी फॉर कन्वेइंग दिस वंडरफुल मैसेज एंड द एनकरेजमेंट दैट यू हैव ऑलवेज बीन प्रोवाइडेड बीन प्रोवाइडिंग। तो थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल फीडबैक। हमारे साथ तो रेनू जी और उदित साहब यानी डॉक्टर उदित यादव जी के साथ बच्चे जो इनके आस पड़ोस के हैं वो सुनते हैं और हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। तो मैं आपको काफ़ी वक्त के बाद देख रहा हूँ इस शो में, आप एक बार फिर से उन बच्चों के नाम लिख भेजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं उनके नाम ले सकूं इस शो में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे शो में जुड़ते हैं, जैसे हमारे साथ हमारी लिटिल एंजल देवीना जुड़ी हुई हैं और उनकी तरफ से फरमाइश हमारे पास रखी हुई है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए श्रेष भाई, आपका बहुत ही शानदार जो है सॉन्ग रिक्वेस्ट है हमारे पास, वो हम आपको सुनवाएंगे। पवन कुमार सिंह साहब ने इस हिंट को पहचान कर सही जवाब लिख भेजा, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आई एम लिसनिंग साइड बाय साइड, ही इज़ डूइंग हिज डे टू डे वर्क, एक्चुअली ऑफिशियल वर्क, ही इज़ नॉट फ्री ओवर द वीकेंड्स ऑल्सो। सो जो शानदार तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहता है पवन साहब का, उसका मैं कायल हूँ। थैंक यू सो मच पवन भाई, आपकी जो शिरकत है इस शो में और आपकी वजह से इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है पवन भाई, थैंक यू सो मच। और मैंने आपको वो एक गाना सुनवाया था अभिजीत साहब की फरमाइश पर, जो था सीमा जी के साथ और ज्योति गांटी ने भेजा था, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आँचल में। तो श्रेष साहब कलकत्ता से, इन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी की है अगर मुझे याद है, तो श्रेष पाठक जो कि हमारे साथ अर्चना जी और देवीना जी के साथ जुड़े हुए हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से, तो वो अपनी पीएचडी वहाँ से कंप्लीट कर रहे थे कलकत्ता से, तो इन्होंने इस फिल्म का बंगाली वर्शन भी देखा है ऐसा इन्होंने मुझे बताया था उसी गाने के बाद, लेकिन मैं इनके मैसेज तक अब पहुँच सका तो वो शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। सो देखा जाए तो हमारे साथ तो एक और डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर श्रेष पाठक जी, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों, सही जवाब पवन साहब ने दिया है, इनके साथ साथ हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब शेयर किया उनके नाम हैं शालिनी सिंह, दीपेश पाठक, ब्रिजेश दीक्षित, ऑफ कोर्स इन्हीं की फरमाइश थी ये शानदार। पवन कुमार सिंह एब्सोल्युटली मैंने जैसा मेंशन किया, शिफाली श्रीवास्तव यानी कि डॉक्टर श्रीवास्तव, सही जवाब के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ जैदी मैम जुड़ गई हैं, और जैदी मैम आर यू ट्यून्ड इन फ्रॉम बरेली और अमरोहा, I hope you are back to your hometown, that is Amroha. So, and how is the weather at your end? Please, bataiye kuch baat.
काफ़ी टाइम हुआ है आपके साथ बात किए हुए शो में, मुझे लगता है हुई थी बात रिसेंटली बट नॉट दैट मच। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, यू हैव टू डू योर प्रेयर्स देन यू ज्वाइन द शो, सो आपके लिए अर्ली मॉर्निंग बहुत बिजी रहते हैं आप ज़ैदी मैम। इस बीच हमारे साथ वीना रानी द्विवेदी मैम भी जुड़ी हुई हैं और हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और दोस्तों आइए मैं आपको अब सुनवाने जा रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, सॉन्ग रिक्वेस्ट जो कि बहुत शानदार है, एक से ज़्यादा है बल्कि, ऑफ टॉपिक है लेकिन आप समझते हैं मेरी जो है इस बात को कि टॉपिक पर जो सॉन्ग होते हैं वो तो लेता हूँ मैं, लेकिन ऑफ टॉपिक भी लेता हूँ क्योंकि गाने कुछ ऐसे आते हैं जिनको कि नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो उनमें से एक ऐसा सॉन्ग हमें भेजा है रिक्वेस्ट में वीना रानी द्विवेदी मैम ने, तो इस तरह से उसका हिंट दोस्तों आप पहचान जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ इसको छोटा सा हिंट सुनते ही।

आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत गाना। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं गाज़ियाबाद से मास्टर अर्जुन, डॉली अरोरा एंड संजीव अरोरा जी।

0: इतनी मुसीबत कैसे हो छोटे बेटा?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: था गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया। झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, मेरे पास गर्मी से कुछ बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

छोटी बहन 1959 की ये फिल्म थी दोस्तों, जिसका आपने ये खूबसूरत गाना सुना। वीना द्विवेदी मैम की लाजवाब फरमाइश थी ये, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पसंद किया। दोस्तों, आपके जवाबों को देखकर तो ऐसा ही मुझे लगा। शालिनी सिंह, दीपेश पाठक, डॉक्टर शिफाली श्रीवास्तव, पवन कुमार सिंह साहब, इन सभी के सही जवाब हमें मिले। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द राइट आंसर। इस बीच हमारे साथ राजेश यादव साहब जुड़ गए हैं, क्या बात है। वेदर थोड़ा बेटर हुआ है, थोड़ी गर्मी अभी कम हुई है, बट अभी बारिश नहीं हो रही है, जबकि सुना है बरेली में बारिश हो रही है। तो ये ज़ैदी मैम ने अपने वहाँ से अमरोहा से बताया है हालचाल वहाँ के वेदर के, क्या बात है। तो मैं कुछ मैसेजेस मिले हैं, मैं बाद में शेयर करता हूँ आपके साथ, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और फरमाइशी गाने की तरफ। वो भी ऑफ टॉपिक है, लेकिन है बहुत शानदार, और इसमें कुछ रिलेशन तो दिख ही रहा है मुझे दो गानों में, जो कि आपने अभी एक सुना और जो आने वाला है। वो आप मुझे बताइए कि क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। शाहजहाँपुर से रिहान हसन खान सर हमारे साथ जुड़ते हैं, और उन्होंने ही इस गाने की फरमाइश लिख भेजी है। तो आइए मैं आपको हिंट देता हूँ दोस्तों, फिर सुनवाता हूँ इनकी बहुत ही शानदार फरमाइशी गाने को।

गुड मॉर्निंग, आप सबसे मिलने के लिए आ जाती है आरजे अदिति, प्यार के दस्तावेज लेकर भारत एफएम पर। हाँ, सही सुना है, हर शनिवार को 10 से 11 के बीच मैं मिलने आती हूँ आप सबसे, प्यार के दस्तावेज की डाली को सजाकर। बहुत सारे सौगात इसमें सजाकर लेकर आती हूँ और आप लोगों से रूबरू होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। तो यूं ही सुनते रहिएगा आरजे अदिति को प्यार के दस्तावेज में भारत एफएम पर। और भी कई जगहों पे मैं आती हूँ, जैसे कि स्पॉटिफाई हुआ, जैसे कि हब ऑपर हुआ, जैसे कि यूट्यूब हुआ, जैसे कि बहुत सारी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप लोग मुझे सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं और मेरी शेर व शायरी, कहानियाँ, बहुत कुछ सुन सकते हैं। तो बताएं, इस ठंड के मौसम में आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि एक तो 7 दिनों का गैप होता है आप लोगों से मिलने का, और सेकेंडली यहाँ बहुत ठंड लगती है मुझे। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ठंड वंड अच्छी नहीं लगती। क्या करें बताइए ना, ज़रा चाय वाय तो पीती नहीं हूँ। आप लोगों से मिलने का वादा करके जाती हूँ, इसीलिए हर बार आना पड़ता है, लेकिन लेकिन ठंड मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है बताइए तो ज़रा। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्र की खुद मुख्तारियों की कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, कहां जाना जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती है करने के लिए, और बहुत सारी चीजें लगती है बेतुकी सी है, क्योंकि जैसे कि हम सोचते हैं कि सांस लेना कितना जरूरी है, आप लोगों से मुझे मिलने आना बहुत जरूरी है, आप लोगों से बातें करना मेरा जरूरी है, और मुझे आप लोग यहाँ तो जानते ही हो, सबसे मिलने का ये आसान सा तरीका जो भारत एफएम के माध्यम से मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये असर है तुम्हारी गैर मौजूदगी का, ये असर है तुम्हारी गैर मौजूदगी का, सांसें रुक जाने की जिद करती है, धड़कनों का भी ख्याल रखना पड़ता है। सांसें रुक जाने की जिद करती है, धड़कनों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उफ, क्या लिखते हैं लोग, है ना। हाँ, जरूरी बहुत कुछ होता है, लिखना, जीना, खाना, ओढ़ना, पहनना, बातें करना, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हर हफ्ते आप लोगों से मिलने आना, जाना कितना जरूरी है, आना भी उतना ही जरूरी है। और जरूरी ना होता तो हम और आप यूं इस तरह चाय के साथ इस तरह से ना मिलने होते, क्योंकि कोई शायद अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, कोई सोकर उठ रहा होगा, कोई ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा है कि भारत एफएम को, और वैसे ही जरूरी होता है मुझसे मिलना आपका, क्योंकि प्यार के दस्तावेज को सजाकर लाती हूँ मैं हर शनिवार 10 से 11 के बीच, क्योंकि मुझे आप लोग नहीं सुन पाओगे तो फिर आपका दिन भी तो जरूरी सा नहीं लगेगा ना। यस यस, आपने सही सुना है, मुझे सुनना बहुत जरूरी हो जाएगा एक दिन, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि प्यार के दस्तावेज इस तरह से प्यार से सजाने वाला बस एक ही है, वो है आरजे अदिति। आप लोगों से प्यार के दस्तावेज से बहुत बहुत मिलने की कोशिश करती रहती है। 7 दिनों का अंतर होता है, 7 दिनों का गैप होता है, उसी 7 दिन के अंदर मुझे आप लोग स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सुन सकते हैं, फेसबुक पे सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। आती हूँ ना मैं इसी तरह आप लोगों से मिलने के लिए, प्यार के दस्तावेज को सजाकर भारत एफएम पर। जाइएगा कहीं नहीं, बस स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी ज़रूरी बातें करने के लिए फिर से आ रही हूँ थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि ज़्यादा देर की तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो ज़रूरी ये है कि आप सुनते रहें मुझे। आती हूँ बस छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं।

था वो राहों पे मेरी तरह गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही हम जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं, और कभी कभी बहुत जरूरी सा हो जाता है बहुत सारे काम करना, उनमें सांस लेना। ओह माय गॉड, सोचिए तो जरा, सांस ना ले पाए तो कितना बुरा वक्त शुरू होगा। हाँ, मुझसे मिलना आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि तय है कि प्यार के दस्तावेज में आप लोग मुझसे मिलेंगे। इसी तरह शनिवार 10 से 11 के बीच मिलने आती हूँ मैं, प्यार के दस्तावेज सजाकर, मैं आरजे अदिति भारत एफएम पर, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हैं और मुझे पता चलता है कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, वरना कैसे कहूँ कि आप लोगों से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर वक्त हमारा सही होता रहे, और जरूरी ये भी नहीं कि हर वक्त हमारा बुरा चलता रहे। बहुत सारी चीजें होती है हमें जिंदगी में पूरे तय करने के लिए, बहुत सारे जरूरी जरूरी काम होते हैं, जैसे कि सुबह उठ के चाय पीना, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना, जैसे कि आप अपने घर वालों के लिए खाना पका रहे हैं, जैसे कि ऑफिस जाना, जैसे कि बॉस की डांट सुनना, बहुत जरूरी हो जाता है बहुत सारी चीजें। हाँ, उन सब जरूरी बातों में मेरी बातों को सुनना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तुम समझ पाओ, जरूरी ये भी नहीं कि तुम जिसे चाहो वो भी तुम्हें उतना ही चाहे, जरूरी ये नहीं कि तुम जिसे समझो वो भी तुम्हें उतना ही समझ पाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि जिसके संग तुम रहना चाहो उसके साथ रह पाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम ही कहना, और सारी जरूरी बातों को छोड़कर लोग सारी बातें कह जाते हैं जो जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम उन्हें जरूरी समझकर सुन लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, और रिश्तों को खराब कर बैठते हैं। लोग क्या कहेंगे मत सोचो, मुझे क्या करना है वो सोचो, है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में जो जरूरी नहीं होती है, लेकिन हम उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे बैठते हैं। इसी वजह से कई चीजें खराब होती रहती हैं, कई रिश्ते खराब होते रहते हैं, कई बनती हुई बातें बिगड़ती रहती हैं। सो हमें समझना होगा कि जरूरी क्या है और जरूरी क्या नहीं है। जरूरी वो है जिसे आप समझ पाओ, और जरूरी ये है कि जिससे, जिन बातों से आपको बुरा ना लगे, उन बातों को अपने अंदर संजो के रखिए। सबकी बातें सुननी चाहिए, करनी अपनी ही चाहिए। सुना है मैंने किसी से, किसी ने कहा था ऐसा। हाँ, सांस का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, मगर उसे पाने की पूरी कोशिश होना जरूरी है। हर लम्हों का यादगार होना जरूरी नहीं है, मगर यादगार लम्हों का दिल में महफूज होना बहुत जरूरी है। हर एक बात का कहा जाना जरूरी नहीं है, मगर हर एहसास का महसूस होना बहुत जरूरी है। जिंदगी हर एक से बेहतर हो अपनी जरूरी नहीं है, जिंदगी हर एक से बेहतर हो अपनी जरूरी नहीं है, मगर किसी की जिंदगी बेहतर कर पाना बहुत बहुत जरूरी है। अपने लिए जीना तो सबको आता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना जब जरूरी बन जाता है तो हम बहुत ऊंचे ऊंचे मकामों पर पहुंच जाते हैं। हाँ, हमको नहीं पता होता है कि हम क्या कर बैठ रहे हैं, कितनी जरूरी बातें कह जा रहे हैं, कितनी जरूरी बातें कर जा रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत ही जरूरी है। मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं।

किसी ने कभी खूब लिखा है ना, दिल का दूरी से कोई वास्ता नहीं होता, दिल का दूरी से कोई वास्ता नहीं होता, जो खास होते हैं वो खास ही रहते हैं, जो खास होते हैं वो खास ही रहते हैं। आ गई हूँ फिर से, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है। आरजे अदिति प्यार के दस्तावेज में आप सभी का स्वागत करती है भारत एफएम पे। आप लोग जानते ही तो हैं कि मुझे शुक्रवार और शनिवार को सुन सकते हैं, शुक्रवार 7 से 8 के बीच और शनिवार 10 से 11 के बीच। प्यार के दस्तावेज लेकर हर शनिवार को आप लोगों से मिलने के लिए आती है आरजे अदिति। आप लोग तो जानते ही हो मुझे, कौन नहीं जानता मुझे, किससे मैं छुपाई हूं, क्योंकि आप लोगों से मिलना मेरा जरूरी होता है और जरूरी बातों को लेकर आज प्यार के दस्तावेज में बहुत सारी जरूरी जरूरी बातें कहने के लिए आई हूँ। दर्द का खेल भी कितना अजीब है ना, दर्द का खेल भी कितना अजीब है, जब अपना होता है तो बहुत ज्यादा लगता है, जब अपना होता है तो बहुत ज्यादा लगता है, पर जब दूसरों का हो तो बेबुनियाद सा लगता है, जब दूसरों का हो तब बेबुनियाद सा लगता है, क्योंकि हमें जरूरी नहीं लगता है कि हाँ वो इंसान दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे दर्द से ज्यादा किसी और का दर्द है ही नहीं, पर ये बहुत गलत बात है। सब चीजें जरूरी हैं लाइफ में, बहुत जरूरी है, हर एक मोमेंट, हर एक पल बहुत जीना जितना जरूरी है, उन्हीं एहसासों में अपने साथियों के संग जीना और अपने जज्बातों को अपने पास बरकरार रखना और अपने सपनों को साकार करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है सांस लेना। एहसासों की नमी होना जरूरी है हर रिश्ते में, एहसासों की नमी होना जरूरी है हर रिश्ते में। रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल जाती है, रेत सूखी हो तो हाथों से फिसल जाती है। समझ पा रही है आप इन बातों को, कितनी बखूबी से लिखा गया है कि अगर बॉन्डिंग नहीं होगी रिश्तों में, जो महक है रिश्तों की, जो चाहत है रिश्तों की, जो साझा करने की जो चाहत है, सम्मान है, आदर है, प्यार मोहब्बत है, उन सब का बॉन्डिंग नहीं होगा तो रिश्ते टूटते बिखरते रहेंगे, रेत की तरह फिसल के गिर जाएंगे हाथ से, बंधा हुआ या जज्बातों में नहीं रह पाएंगे। जरूरी बहुत कुछ होता है जिसे बचाने और बचाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पैसे अगर ज्यादा हो तो लोग रेत देखने की दुबई जाते कितना खूबसूरत लिखा है, हाँ ऐसा होता है रेत जो हमारे हाथों से फिसल के गिर जा रही है, हम उसे देखने के लिए हम दुबई जाते हैं, कह रहे हैं कोई उसी तरह, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जज्बातों को और जो हमारे पैसे हमारे लिए जब जरूरी नहीं होते तो हम उन्हें बेखर्च कर लेते हैं, क्योंकि खर्च तो करना सबको आता है लेकिन गलत जगह पर खर्च करना बहुत कम लोगों को आता है। रेत का वो कण हूं जिसे हर वक्त हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि आप लोग उन बातों का भी ख्याल रखें जो आपके लिए बेबुनियाद सी लग रही हो, और उन बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो मिलती हूँ मैं छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि मैं बहुत जरूरी हूँ आप लोगों से मिलने जो आती हूँ, आप लोगों के लिए मैं जरूरी हूँ, है कि नहीं। माना कि हफ्ते भर बाद आती हूँ आप लोगों से मिलने, प्यार के दस्तावेज में आप लोगों से रूबरू होती हूँ, बातें करती हूँ, कई टॉपिक्स को सजा कर लेके आती हूँ, नॉस्टैल्जिक गाने उसमें होते हैं, और मुझे शनिवार को 10 से 11 के बीच आप लोग किसी तरह सुन पाएंगे। आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि आप लोगों को अब आदत सी तो बनी गई होगी ना, क्योंकि आरजे अदिति भारत एफएम पे हर शनिवार और शुक्रवार को मिलने आती है आप लोगों से। तो मेरा प्रोग्राम कैसा हो रहा है प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। भारत एफएम में इसी तरह सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद,
जाइएगा कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं, तो बने रहिए यूं ही। मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।

बस आ गई हूँ मैं आरजे अदिति, प्यार के दस्तावेज को सजा कर लेकर आई हूँ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और वेलकम करना चाहती हूँ जो हमारे नए दोस्त इस वक्त जुड़ रहे हैं। बता देना चाहती हूँ कि बस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर पहुँच रहे हैं। आज का टॉपिक था ज़रूरी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे लाइफ में ज़रूरी, वो ज़रूरी सी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है बहुत कुछ जानना। रिश्ते निभाने में झुक जाना मजबूरी नहीं होती, कभी कभी यूं ही चुप रह जाना कमजोरी नहीं होती। सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है मेरे दोस्त, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर सब कुछ पा लेता इंसान यूं ही खुद ही, तो किसी की भी कोई हसरतें अधूरी नहीं होती। और हसरतों के बिना भी किसे याद रखते हम, और हसरत के बिना हम किसे याद रखते हम, फिर इस जहां में खुदा की खिदमत भी जरूरी नहीं होती, खुदा की खिदमत भी जरूरी नहीं होती, है ना। तो इसी तरह बहुत सारी बातें जो हमारे लिए जरूरी है, उन बातों को हम याद करते हैं, समझते हैं, अंदर हमारे अंदर जहन में बिठाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है ना। तो लोग इसी तरह ज़रूरी और अनइम्पॉर्टेंट बातों को लेकर ज़िंदगी बिताते हैं, फिर भी उसे इश्क को जीना है, फिर भी उसे इश्क को जीना होता है जो ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इश्क बिना हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल है, कुछ लोग कहते हैं कि इश्क बिना क्या जीना यारो। हाँ, इसी तरह इसीलिए प्यार के दस्तावेज़ में बहुत सारी बातें करने के लिए आरजे अदिति एवरी सैटरडे आप लोगों से मिलने आ जाती है भारत एफएम के ज़रिए। और मुझे सिर्फ भारत एफएम पे नहीं, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और यहाँ के जो लोकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं अनफिल्टर्ड गपशप के माध्यम से मुझे सुन सकेंगे। और बहुत सारी ज़रूरी ज़रूरी अनाउंसमेंट्स जो होती है, ज़रूरी ज़रूरी बातें जो होती है आप लोगों से करने के लिए एवरी सैटरडे, वो आ जाती है आरजे अदिति, कभी भूलिएगा नहीं। और आपकी फरमाइशें, आपके जो फरमाइशी गीत हैं, जो गाने आप सुनना चाहते हैं, जो नॉस्टैल्जिक तौर पे आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे लिख के भेजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा। आप लोग मुझे जानते ही हैं कहाँ मिल जाऊँगी मैं। सो ज़रूरी ज़रूरी बातें करने के लिए हम फिर से मिलेंगे भारत एफएम के ज़रिए, और यूं ही मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, और फीडबैक देना आप लोगों का बहुत ज़रूरी काम है। तो यूँ ज़रूरी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, इसी तरह मुझे सुनना है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। फिर से थाम लेना मेरा हाथ, जिन लकीरों में सिर्फ बेवफाई थी, उन बातों को मुक कर जाना, और उन बातों से फिर न कभी टकराना। ज़रूरी है कि सब अनकही सी, अनएक्सपेक्टेड सी, अनलाइकिंग सी बातों को भूल जाएं, और आने वाले नए सारे ज़माने की नई सारी बातों को अपनाएं, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप में चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं। कौन कौन मेरी इन बातों से सहमत है ज़रा लिख के बताइएगा, ज़रा सुन के बताइएगा, और मुझ तक अपना पैगाम बहुत ज़रूरी तौर पर पहुँचाइएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ मैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले शनिवार, अगले सैटरडे 10 AM to 11 AM के बीच मैं फिर से मिलने आऊँगी भारत एफएम के ज़रिए कुछ कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मिलती हूँ प्यार के दस्तावेज़ में बहुत जल्द। टेक केयर करें,
जाइएगा कहीं नहीं, भारत FM को सुनना बहुत जरूरी है, सुनते ही रहिएगा।

चाहा है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूं, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

गुड मॉर्निंग, आप सबसे मिलने के लिए आ जाती है आरजे अदिति प्यार के दस्तावेज लेकर भारत एफएम पर। हाँ, सही सुना है, हर शनिवार को 10 से 11 के बीच मैं मिलने आती हूँ आप सबसे प्यार के दस्तावेज की डाली को सजाकर। बहुत सारे सौगात इसमें सजाकर लेकर आती हूँ और आप लोगों से रूबरू होना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। तो यूं ही सुनते रहिएगा आरजे अदिति को प्यार के दस्तावेज में भारत एफएम पर। और भी कई जगहों पे मैं आती हूँ, जैसे कि स्पॉटिफाई हुआ, जैसे कि हब ऑपर हुआ, जैसे कि यूट्यूब हुआ, जैसे कि बहुत सारी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप लोग मुझे सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं और मेरी शेर व शायरी कहानियाँ बहुत कुछ सुन सकते हैं। तो बताएं इस ठंड के मौसम में आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि एक तो 7 दिनों का गैप होता है आप लोगों से मिलने का, और सेकेंडली यहाँ बहुत ठंड लगती है मुझे। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ठंड वंड अच्छी नहीं लगती, क्या करें बताइए ना। ज़रा चाय वाय तो पीती नहीं हूँ, आप लोगों से मिलने का

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम है।

0: दिस इज भारत FM.
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत.
0: ये है भारत FM.
1: बजेगा भारत, झूम

0: दिस इज भारत FM.
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत.
0: ये है भारत FM.
1: बजेगा भारत, झूमेगा.

0: अरे होली आ गई, पर इतनी शांति क्यों है?
1: अरे वो देखो, सामने से मस्तों की टोली आ रही है।

बिना कहे वो समझ गए, बिना कहे वो समझ गए, बस यही चाहत है मेरी, कहते कहते चुप हो जाना बुरी आदत है मेरी। दोस्तों, फरमाइश पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और ताल के इस गीत का राग था अहीर भैरव, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी AR रहमान ने, और गा रहे थे ऋचा शर्मा और सुखविंदर सिंह। ताल 1999 में रिलीज हुई थी, और आज की शाम ताल के नाम नहीं रागों के नाम है, पर सब आधुनिक गाने हैं। अहीर भैरव मॉर्निंग राग है, जैसे कि उसका नेम इम्प्रेस करता है, अहीरों का राग है, सवेरे सवेरे उठ के। और हम दिल दे चुके सनम काल, बेला सजन आयो रे, या वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, या राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापू पापियों के पाप धोते धोते, या आशिकी का अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ऐसे गीत हैं, बहुत खूबसूरत गीत हैं अहीर भैरव में। पर आज मैं आपको 24 राग सुनाने वाला हूँ, और सारे नए गानों के साथ चलते हैं मास्टर राग भैरवी की तरफ। संपूर्ण राग है भैरवी थाट का, और जी हाँ, सब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि दूरदर्शन में जब भी म्यूजिक बजता था, याद होगा आपको, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो राग भैरवी में था। लीजिए सुनिए फिल्म एजेंट विनोद का ये खूबसूरत गीत, जिसकी कंपोजिशन की थी प्रीतम ने।

तो दोस्तों ये तो था नंदिनी श्रीकर का मास्टरपीस जिसे लिखा था नीलेश मिश्रा ने, इसका म्यूजिक बनाया था प्रीतम ने, फिल्म का नाम था एजेंट विनोद। चलिए अगले राग की तरफ चलते हैं और इस बार बारी है राग बसंत की। राग बसंत जो है ऑब्वियसली बसंत के आने को सेलिब्रेट करता है, पर उससे ज़्यादा वो आपको ये कहता है कि आप अपना स्वार्थ, जैसे कि स्प्रिंग क्लीनिंग होती है दिमाग की, स्वार्थ अपने दिमाग से निकालें और नई साइकिल लाइफ में शुरू करें। जी हाँ, बसंत यानी स्प्रिंग आ रहा है और सिख रिलीजन में तो गुरु ग्रंथ साहब में तो राग बसंत का भरपूर से इस्तेमाल किया हुआ है, पर इस बार हम चल रहे हैं देवदास की तरफ। काहे छेड़े छेड़े मोहे।

0: बालाओ।
1: तो दोस्तों भालो लागे राग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक और खूबसूरत नगमा है आपके लिए, पर इस बार फिल्म का नाम है लगान। और फिल्म लगान से राग भीम पलासी का ये गीत आपको ज़रूर भाएगा। लीजिए सुनिए ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन।

तो दोस्तों ये तो था फिल्म लगान का मास्टरपीस। पर अभी हम भीम पलासी से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट आई है हमारे रेडियो जॉकी विजय साहब की। फिल्म का नाम था क्रिमिनल, और जी हाँ, गाने के बोल ही कुछ ऐसे हैं कि तुम मिले दिल खिले, अब जीने को क्या चाहिए। देखिए

तो यह तो थे कुमार सानू, अलका याग्निक और चित्रा, एमएम क्रीम का म्यूजिक और मूवी का नाम था क्रिमिनल। चलिए, कोई क्रिमिनलिटी नहीं होगी क्योंकि अब हम चलेंगे भीम पलासी से भोपाली की तरफ। भोपाली जो है अर्ली नाइट का राग है, इसमें बेसिकली पांच नोट होते हैं सारे ग प ध, और इसका जो पकड़ है वो मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे तो गाना वाना कुछ आता नहीं है, पर इतना बता दूँ कि आप तीन ताल में ही इसको पकड़ते हैं। और भोपाली राग यगमन और राग भैरव आर द थ्री थिंग्स, तीन राग हैं जो कि म्यूज़िक के स्टूडेंट शुरू शुरू में सुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको भोपाली का क्लासिक गुरु का वो गीत दम दरा मस्त मस्त सुनाऊंगा, पर मैं वो नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आपको एक गीत ऐसा सुनाऊंगा जो करीब करीब भोपाली जैसा है। एग्जैक्टली नहीं है, पर कोई बात नहीं, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन चलती रहेगी आज शाम भर, और अगर कोई गलती हो गई तो माफ करिएगा। लीजिए सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत नगमा राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, फिल्म का नाम था नमस्ते लंदन। कहते हैं दोस्त कि मुझे कुछ भी नहीं कहना, इतनी सी गुजारिश है, मुझे कुछ भी नहीं कहना, इतनी सी गुजारिश है, बस उतनी बार मिल जाओ जितना याद आते हो, क्योंकि मैं जहां रहूं तेरी याद साथ साथ है।

जी हाँ दोस्तों, यादों की कीमत वो क्या जाने जो किसी को यूं ही भुला देते हैं। यादों की कीमत वो क्या जाने जो किसी को यूं ही भुला देते हैं। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। अगले मोड़ पर आपको एक गीत सुना रहा हूँ। फिल्म का नाम था आँखों देखी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। बड़ा ही खूबसूरत नगमा है जिसे गाया है मंशील गुजराल ने। इसके बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और म्यूज़िक कंपोजिशन की है सागर देसाई ने। थोड़ा हटके है गाना क्योंकि राग भी थोड़ा हटके है। अब आपको राग भिन्न शज्जा के बारे में काफ़ी कुछ मालूम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ बड़े गुलाम अली खां का याद पिया की आए, या मैं आपसे कहूँ तुम बिन जीवन कैसा जीवन, मन्ना डे का फेमस गीत, तो आपको राग तो समझ आ गया। अब लीजिए एक नया गीत सुनिए मंशील गुजराल की आवाज़ में, धीमे रे रे। ये भी यादों के बारे में है, पर इस बार यादों का मिलाव जो है वो पंछियों के साथ हो रहा है। देखिए कितनी खूबसूरती से।

तो ये तो था भिन्न सदज। अब अगला राग जो है, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद अपने आप उसको धरती पर लेके आए थे। स्वामी हरिदास का क्रिएशन है, काफ़ी थाट का राग है, वृंदावनी सारंग। और अगर कृष्णा का, अगर कृष्ण की पूजा हो रही है तो देखें शायद घूमर करते हुए हो जाए यही पूजा, क्योंकि फिल्म आपको याद होगी पद्मावत में ये गीत आया था।

हाँ तो दोस्तों, ये तो था फिल्म पद्मावत का एक खूबसूरत नगमा। जी हाँ, संजय लीला भंसाली का म्यूज़िक, श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज़ें, और राजस्थानी लिरिक्स जो थे वो इसमें स्वरूप खान ने खुद ही लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले मोड़ पर आपको एक और खूबसूरत गीत सुना रहा हूँ, पर इस बार वृंदावनी सारंग से हम चल रहे हैं रागधानी की तरफ। अब आप बहुत दिनों से नवरात्रि में गरबा करते रहे हैं तो ओढ़नी तो नहीं सुनाऊंगा आपको, पर इस बार विकी डोनर का गीत सुनाऊंगा। रागधानी एक पेंटाटोनिक राग है, 5 स्वरों का राग है, और कहा जाता है कि अब भीमपला से अगर उसके नोट्स निकाल दिए जाएं तो वो रागधानी जैसा लगेगा, और वैसे भी एक राग मालकौन से भी मिलता जुलता है, पर इस बार आयुष्मान खुराना ने क्या कमाल कर दिया, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि पानी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं, और कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। उम्मीद यही है कि ये गीत भी आपकी शाम उसी तरह से रंगीन बनाएगा।

0: तो रोचक कोहली की इस कॉम्पोजिशन से आगे बढ़ते हैं राग गारा की तरह, जय जयवंती जैसा है और खमज पीलू झिंझोटी सबसे मिलता जुलता है, खमज थाट में है। और आपको तो याद होगा तीन देवियों का वो गीत, ऐसे तो ना देखो, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़ी मज़ेदार से दादरा ताल में गाया था। और या आपको याद होगा गाइड का, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तो काफ़ी खूबसूरत पुराने गीत हैं, पर नए भी बहुत सारे अच्छे गीत हैं। और इस बार आपको जो गीत सुना रहा हूँ वो AR रहमान साहब की कॉम्पोजिशन है। कहते हैं कि दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए, दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए, और ससुराल वही अच्छा जहाँ मायके की याद ना आए। अब ससुराल ही गेंदा फूल हो जाए तो कितना खूबसूरत हो। Delhi 6 का ये गीत एंजॉय करिए।
1: आकर

0: तो ये तो था दिल्ली सिक्स का गीत, होपफुली यू गाइस एंजॉयड इट. और राग गायरा से हम बढ़ रहे हैं राग झिंझोटी की तरफ. एक बड़ी मज़ेदार मूवी आई थी फुकरे, बड़ी लो बजट मूवी थी इसलिए ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं, पर फुकरे जैसे कि नाम इम्प्लाई करता है इज़ अबाउट बेसिकली फुकरे लोग जो कि जुगाड़ करने में लगे रहते हैं. तो ठीक है, फिर देखते हैं राग झिंझोटी का कैसे वो जुगाड़ करते हैं.
1: पढ़

तो दोस्तों ये तो थे कैलाश खेर और कीर्ति सगाठिया। फिल्म का नाम था फुकरे और मुन्ना धीमान के बोलों को धुन में सजाया था राम संपत जी ने। जी हाँ, चलिए झंझोटी से आगे बढ़ते हैं किंग ऑफ रागास की तरफ, यानी कि राग केदार, जो कि भगवान शिव का राग माना जाता है। अब शिव जी और कृष्णा जब दोनों भगवान इस तरह से केदार की बढ़ाई करेंगे तो शाहरुख खान स्वदेश में भी उसकी काफ़ी बड़ाई करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, पूरा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट यू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय एंड काउंट द ब्यूटिफुल स्टार्स ऑन अ स्टारी स्टारी नाइट।

0: सारा।
1: माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं केदार से सीधे खमज पे चला गया, तो मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। केदार अगले मोड़ पे सुलाता हूँ, सॉन्ग इंटरप्ट करने के लिए बहुत बहुत माफी।